कपूरी कपड़ा तासोहेनो जुआह पती माता आया इका पूरा कतर बांगोहेनो।